0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89। वी आर
6: प्लेइंग योर सॉन्ग।
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
8: Save, text, voice note or call to get your song played.
9: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
10: City FM 89.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing the song.
5: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
9: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa daalein.
0: City FM 89, we're playing your song.
12: City FM 89 is now live on WhatsApp.
13: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
13: Save, text, voice note or call to get your song played.
9: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
14: Temptation, come show me what I've been missing, yeah, yeah. Show me what you're working with. Put that body in motion.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89. कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: Phone upgrade karne ka soch rahe ho? To suno. Phone ho to 5G wala. Milega kaise? Bas Jazz Experience Center ya Jazz e-store par jao. Aur naya 5G wala phone apna banao. Yehi nahi. Full payment par pao, saath mein free data bundles, handset insurance aur bahut kuch. To phir phone ho to 5G wala. Jazz 5G.
5: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
6: Ab milegi aapko European Standard Training, wo bhi yahin Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority, ENAC.
7: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट, then this is your moment to shine.
6: Real aircraft experience, world class training और global career experience, सब कुछ एक ही प्रोग्राम में.
5: Last date to apply is 4th October 2026. अभी अप्लाई करें at www.nivt.edu.bk और will be 100% free on scholarship.
8: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
5: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें.
6: City FM 89.
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
10: Save, text, voice note or call to get your song played.
11: And talk to your favorite artists.
9: Only on City FM 89.
12: City FM 89.
13: We're playing your song.
14: Mornings evolve and so do we.
15: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
16: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
14: The freshest music, the hottest gossip.
15: And the energy Gen Z lives on.
14: It's bold, it's current, it's your morning routine.
15: The Breakfast Show.
14: Only on City FM 89.
0: City FM 89, we're playing your song.
15: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
2: Trending today.
5: Pop star Miley Cyrus has released a brand new album titled Bass Persuades. The album is up on all platforms.
6: We are
3: City FM 89.
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
11: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है. लेकिन जब कदम ही आगे ना बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
12: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
13: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
14: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें.
3: City FM 89.
1: You're listening to
2: The Rush Hour with ABD.
15: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through fun facts. This one in particular I love. Nintendo's iconic mascot Super Mario wasn't originally named Mario. His original name was Jumpman. He was officially renamed Mario after Nintendo of America's angry 1980s warehouse landlord, Mario Segal. Now just imagine how insane that is, that someone, because you're just angry or whatever, a character is named after you. I think it's quite iconic. If I can say so, I would love to have a character as famous as Mario named after me. But also just imagine being named that because you're angry. I don't know. Maybe he was Italian as well. Maybe he was a plumber. I cannot say. He was a landlord, but maybe he was a landlord plumber. I can't say. But the fact that they named him Mario, just, I don't know, it seems fitting. And I cannot imagine now Mario being called anything else. Like, it's just iconic, like Mario and Luigi, Mario and Donkey Kong. You can't think of anything else. It's just Mario. Imagine it was Jumpman and Donkey Kong, or Jumpman and Luigi. That's just boring. So yeah, I absolutely

0: the perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
3: We're playing your song.
0: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We are
2: City FM 89.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
5: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है. लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
6: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें.
7: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G,
8: द हार्टबीट ऑफ योर सिटी. सिटी FM 89.
9: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
10: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
0: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: All right, guys, that is it for today's show. I hope you enjoyed. That has been a fun Tuesday, and I cannot wait for tomorrow, which is the best day of the week. It will be a Wednesday. Also, I will say I really enjoyed today's history mystery. I just thought it was so funny and so accurate and so amazing how nature sometimes will just win. You know, you can launch an entire army against a bunch of flightless birds, but if they want to stay, they will stay. On that note, I hope you have a great evening and I'll see you tomorrow at 5 p.m.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: City FM 89
3: Your drive along companion
1: You're listening to
4: Future Sounds

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM
4: 89. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
6: You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.
7: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe.

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
2: City FM 89. City FM 89 is now live on WhatsApp.
4: It's so easy.
5: 0314-289-8989.
4: Save, text, voice note or call to get your song played.
5: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
6: Don't adjust your dial.
2: This is
7: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
7: Future Sounds.
2: Stay fresh, stay lit. New music drops right here.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Miley Cyrus has released a brand new album titled Bass Persuades. The album is up on all platforms.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
10: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
11: 89
12: We're playing your song
13: You're listening to
14: Future Sounds
15: Future Sounds.

0: dance along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अली नूर in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that define a generation to the music that continues to inspire millions, the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council, Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
3: City FM 89, we're playing the song.
6: You're listening to
7: Future Sounds.
8: Future Sounds.
7: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.